परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के तीन स्तंभ हैं। ये वो आदर्श हैं जिससे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं। जब तक आप यहां हैं, गुरुकुल ही आपकी दुनिया है। अगर कोई भी स्टूडेंट यहां की परंपरा और अनुशासन को तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो वो उसी वक्त यहां से निकाल दिया जाएगा। और इतना याद रखिए कि एक बार आप यहां से निकाले गए तो हमारे साथ इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस के दरवाजे भी आपके लिए बंद हो जाएंगे।

0: इतनी मजबूत है कि कोई राज आर्यन हाथों में वायलन और चेहरे पे मुस्कान लिए यहाँ उसकी एक भी ईंट हिलाने के लिए कदम नहीं रख सकता।
1: मैं एक वादा करता हूँ आपसे मिस्टर नारायण शंकर कि जब तक मैं यहाँ से जाऊंगा मैं यहाँ पर इतनी मोहब्बत भर दूंगा कि 10 जन्मों तक भी आप उसे निकाल नहीं पाएंगे।

0: दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहतें। मर भी जाएं प्यार वाले, मिट भी जाएं यार वाले, जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें।
1: Yes, that was a trailer for the movie Mohabbate with the synopsis. Well, here is one of the most popular songs from that movie done by Lata Mangeshkar, Urit Narayan. The song is Humko Hame Churaye Lo Humke Hum. Oh, brother. Humko Hame Churaye लो हम के हमें हमें चुरा लो। यह लता मंगेशकर और उदित नारायण।

किशोर कुमार देव जिंदगी आ रहा हूं मैं वेल अनोइंगली अनोइंगली एनी हाउ यू कुड थिंक अबाउट इट बट टू मी ऑनेस्टली वाज अनोइंगली वी हैव अ वर्ड आई मीन ए song title here a word song title with a word the word is zindagi this one is by Lata Mangeshkar and the song is tujhse naraaz nahi zindagi here is Lata Mangeshkar with tujhse naraaz zindagi